अगर तुम न निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो खुदा के पूरे फरमाबरदार होंगे और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है।

इजाजत वही लोग मांगते हैं जो खुदा पर और पिछले दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डामाडोल हो रहे हैं।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: वक्फे के बाद एक दफा फिर से खुश आमदीद। हजरत उमर ने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे यह बयान नहीं किया था कि हम बैतुल्लाह की जियारत करेंगे और उसका तवाफ करेंगे? आपने फरमाया क्यों नहीं, लेकिन क्या मैंने ये भी कहा था कि हम इसी साल करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बहरहाल तुम बैतुल्लाह तक पहुंचोगे और उसका तवाफ करोगे। उसके बाद हजरत उमर गुस्से से बिफरे हुए हजरत अबू बकर के पास पहुंचे, उनसे वही बातें कही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी, और उन्होंने भी ठीक वही जवाब दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और अखीर में इतना और इजाफा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब थामे रहो यहां तक कि मौत आ जाए, क्योंकि खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। इसके बाद इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना की आयत नाजिल हुई, जिसमें सुलह को फतह मुबीन करार दिया गया। उसका नजूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब को बुलाया और पढ़कर सुनाया। वो कहने लगे या रसूलुल्लाह, ये फतह है? फरमाया हाँ। उनसे इनके दिल को सुकून हो गया और वापस चले गए। बाद में हजरत उमर को अपनी तकसीर का एहसास हुआ तो सख्त नादम हुए। खुद उनका बयान है कि मैंने उस रोज जो गलती की थी और जो बात कह दी थी उससे डर कर मैंने बहुत से अमाल किए, बराबर सदका व खैरात करता रहा, रोजे रखता और नमाज पढ़ता रहा और गुलाम आजाद करता रहा, यहां तक कि अब मुझे खैर की उम्मीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से वापस तशरीफ लाकर मुतमईन हो चुके तो एक मुसलमान जिसे मक्का में अजियतें दी जा रही थी छूट कर भाग आया। उनका नाम अबू बसीर था। वो कबीला एसकैफ से ताल्लुक रखते थे और कुरैश के हलीफ थे। कुरैश ने उनकी वापसी के लिए दो आदमी भेजे और ये कहलवाया कि हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो अहद पैमान है उसकी तामील कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को उन दोनों के हवाले कर दिया। ये दोनों उन्हें हमरा लेकर रवाना हुए और ज़ुल्हलीफा पहुंचकर उतरे और खजूर खाने लगे। अबू बसीर ने एक शख्स से कहा, ऐ फना, खुदा की कसम मैं देखता हूं कि तुम्हारी यह तलवार बड़ी उम्दा है। उस शख्स ने उसे नियाम से निकाल कर कहा, हाँ हाँ वल्लाह ये बहुत उम्दा है, मैंने इसका बारहा तजर्बा किया है। अबू बसीर ने कहा, जरा मुझे दिखलाओ मैं भी देखूं। उस शख्स ने अबू बसीर को तलवार दी और अबू बसीर ने तलवार लेते ही उसे मार कर ढेर कर दिया। दूसरा शख्स भागकर मदीना आया और दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी में घुस गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, ये खौफजदा नजर आता है। उस शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर बोला, मेरा साथी खुदा की कसम कत्ल कर दिया गया है और मैं भी कत्ल ही किया जाने वाला हूँ। इतने में वो बसीर आ गए और बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका अहद पूरा कर दिया, आपने मुझे उनकी तरफ पलटा दिया, फिर अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ की बर्बादी हो, इसे कोई साथी मिल जाए तो ये तो जंग की आग भड़का देगा। ये बात सुनकर अबू बसीर समझ गए कि अब उन्हें फिर काफिरों के हवाले किया जाएगा, इसलिए वो मदीना से निकलकर साहिल समंदर पहुंच गए। उधर अबू जंदल बिन सुहेल भी छूट भागे और अबू बसीर से आ मिले। अब कुरैश का जो आदमी भी इस्लाम लाकर भागता वो अबू बसीर से आ मिलता, यहां तक कि उनकी एक जमात इकट्ठी हो गई। उसके बाद इन लोगों को मुल्क शाम माने जाने वाले किसी भी कुरैशी काफले का पता चलता तो वो उससे जरूर छेड़छाड़ करते और काफले वालों को मारकर उनका माल लूट लेते। कुरैश ने तंग आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और कराबत के वास्ते देते हुए यह पैगाम दिया कि आप उन्हें अपने पास बुला लें और अब जो भी आपके पास जाएगा मामून रहेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवा लिया, वो मदीना आ गए। इस मुआहिदा सुलह हुदैबिया के बाद اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ سامعین، یہ تھی آج کی نشست۔ اس صلح کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں نئی تبدیلی ہے۔ اس نئی تبدیلی اور دوسرے مرحلے پر ہم اپنی 60ویں نشست میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई सोच,
3: नई सोच,
4: एक नई पहचान,
5: पहचान,
2: एक नई लगन,
5: नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
4: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया।
5: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।

हेलो, यू आर लिसनिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम योर RJ रमशा जैदी विद द न्यू हेल्थ टिप ऑफ द डे।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum and welcome to the Faculty Hour program. Today we have some amazing guests with us, जिनके साथ हम English learning को लेके myths और facts के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी English learning को कैसे improve कर सकते हैं. So stay tuned with us. आज हमारे साथ कुछ expert guest हैं. So let me introduce to them. At the first we have Ma'am Tayyaba Rana. She is Deputy Manager at English Language Center. इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश लर्निंग और मैनेजमेंट के फ्यूजन को समझने में बहुत मदद देगा। एंड नेक्स्ट वी हैव मैम शीबा सुल्तान। शी इज़ लेक्चरर एट UCP एंड टीम लीड राइटिंग सपोर्ट सेंटर। सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लर्न अलॉट फ्रॉम दैट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इंग्लिश लर्निंग को लेके क्या हो सकता है और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं?
3: अच्छा, थैंक यू हबीबा फॉर इनवाइटिंग मी एंड आस्किंग माय ओपिनियन अबाउट दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को जो लर्निंग का तरीका स्कूल्स और कॉलेजेस में है वो उस लेवल का नहीं है कि जैसे कि इंग्लिश बच्चों को पढ़नी चाहिए। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसमें कि हम मुख्तलिफ स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हम कहीं सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि वी डोंट अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, एंड उनकी वो आदत डेवलप हो चुकी होती है जब तक कि वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो बिल्कुल एक लेक्चर स्टाइल से पढ़ के आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम उनको एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। आपको मैं बताऊँ, और ये आपके लिए बहुत शायद नई बात भी हो लेकिन नहीं भी हो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी पढ़ रही हैं उस तरह से। हमने ELC में, जबकि डॉक्टर हबीब काजी साहब ने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने इंग्लिश को एक मॉडर्न जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको एक मॉडर्न फुटिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है। हम लोग जो हैं वो एक कैम्ब्रिज का जो है वो डिज़ाइंड सिलेबस या कोर्स पैक आप उसे कह लें, हम वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड, और हम उसमें इन स्किल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया इनके ऊपर फोकस करते हैं, और हम बच्चों को क्लास में लिसनिंग करवाते हैं। थैंकफुली वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन UCP, हमारे पास ऑडियो वीडियो, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ क्लास में अवेलेबल है, और प्रोजेक्टर्स हैं, मींस वी कैन हैव अ गुड यूज़ ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर वी हैव। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं। इसके अलावा जो है हमारी तमाम क्लासें जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स जो हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो खुद मतलब इट इज़ मोर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड लेस ऑफ टीचर सेंटर्ड। जबकि जो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, एज़ आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि उसमें क्या है कि वो तो एक लेक्चर स्टाइल है कि टीचर्स आते हैं और वो जो भी टॉपिक होता है वो बच्चों को क्लास में करवा के बस बोर्ड का यूज़ किया एंड देन दे कम आउट ऑफ और स्टेप आउट ऑफ द क्लास। बट हम क्या करते हैं, वी गाइड द स्टूडेंट्स, वी टेल देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ एंड हाउ दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देयर लैंग्वेज और देयर लैंग्वेज लर्निंग इनटू द एक्टिविटीज़ एंड देन दे देमसेल्व्स डू इट। तो ये एक हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और हमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बच्चे इसको लर्न कर रहे हैं और उससे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, होपफुली वो फील कर रहे हैं और
2: मैम, जैसे कि आपने बोला कि पीछे से वो एक टिपिकल जो काफी अरसे से लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जब इधर आते हैं तो इनको एकदम बिल्कुल नया एनवायरनमेंट मिलता है इंग्लिश लर्निंग को लेके, तो सम टाइम स्टूडेंट्स को उस चीज में ढलने में टाइम भी लगता है, तो टीचर्स किस तरह से उस चीज को हैंडल करते हैं कि स्टूडेंट्स उस एनवायरनमेंट को अच्छे से कोप अप कर सके?
3: अच्छा, हमारा चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वी टेक इनटू अकाउंट कि ये कैसे होगा। उसमें ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़ और उससे हेल्प लेते हैं, और चूंकि ये सारा सिस्टम ही जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड पेयर एक्टिविटीज़ और डिस्कशन पे बेस करता है, तो उसमें ये है कि चूंकि स्टूडेंट्स दे आर कम्फर्टेबल विद देयर फेलो स्टूडेंट्स विद देयर पीयर्स, और पीयर चेकिंग जो है एक बहुत हमारा एक ख़ास आप कह लें कि वो है, उसमें बच्चों को ये डर नहीं होता कि टीचर हमें जो है वो कोई पिनलाइज करेगी किसी चीज़ के ऊपर या करेगा, ठीक है, तो वो एक अब एक इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम वो जो है वो यूज टू हो जाते हैं और वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, इट टेक्स टाइम, बट विद इन 4-5 weeks दे गेट इन टू दैट सिस्टम और हम फिर उसके मुताबिक उनको चलाते हैं, और हमने उसमें एक अपनी प्रोग्रेशन भी रखी हुई है, यानी अच्छा। कि जो इंग्लिश वन है उसमें हम उनको बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, और जो है वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मींस ग्रामर और सब चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं ना, उन्होंने तो चलते रहना है। उसके बाद जो इंग्लिश टू में वो जाते हैं तो वो फिर ऐसे राइटिंग एटलीस्ट 5 paragraph ऐसे को वो जो है वो करते हैं, उसमें मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी हैव डिजाइंड आर इंग्लिश 3 इन सच अ वे जो कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज है, ESP, वो हम फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं हर फैकल्टी के मुताबिक। अगर कोई मीडिया की फैकल्टी का बच्चा है तो उसका तमाम जो कंटेंट है वो मीडिया रिलेटेड है, अगर लॉ की फैकल्टी का बच्चा है तो द कंटेंट इज लॉ रिलेटेड, अगर IT का है तो वो IT से रिलेटेड है, तो फिर वो जो है हम उनको तैयार करते हैं कि वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो लैंग्वेज की जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं।
2: आई एम हैप्पी टू हियर दैट के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स के उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। मैम शिवा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि UCP एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है रूरल एरिया से होता है, जैसे सिंध हो गया, साउथर्न पंजाब, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स कैसे इफ़ेक्टिव टास्क दे सकते हैं कि उनको वो चीज़ें इजी लगें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं।
4: जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के सारे हिस्सों से आते हैं, और उसमें हम यही स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एरर करेक्शन को स्टूडेंट के ऊपर रेप्रिमांड नहीं करते, कि स्टूडेंट्स को हम कंफर्टेबल रखते हैं, और UCP का जनरल एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि वी अप्रिशिएट द वेरियस कल्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कल्चरल डे मनाया जाता है, हर स्टूडेंट का जो जिस खित्ते से वो आए हैं उनके कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है, तो क्लासरूम में भी हमारा ये एक स्टाइल है कि अगर जो स्टूडेंट जिस भी एक्सेंट में बात करता है या उनकी जैसी भी प्रोनंसिएशन है, हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो उसको जो है वो बेशक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश की तरफ लेके चलें, लेकिन देर इज़ नो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स। वी इनक्रेज आर students to speak with their accents, we encourage them to improve their pronunciation, or rather to take their pronunciation towards standardized English with the passage of time. To ekdam se hum unko nahi bombard kar dete cheezon ke sath, hum unko unhi ke style mein leke chalte hain, aur ye jaise ki ma'am ne bataya hai ki we have a lot of group activities, to even hamari jo end of semester ki project presentations hoti hain wo group mein hum start karte hain, so we give a choice to the students ke aap solo presentation karna chahein to kar lein, lekin group mein ye hota hai ki बच्चों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है।
2: यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैम से क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। तब तक सुनते रहिए FM 92.6।

0: Welcome back, listener. I'm your host, Ume Habiba, at 92.6. So, continue our question answer session. Ma'am, आपने जैसे कि बताया कि English Language Center किस तरह से contribute कर रहा है. तो एक typical classroom से हट के भी English Language Centers की क्या खिदमात हैं जो सर अंजाम दी जा रही हैं, आप उसके बारे में बताएंगे?
1: We are part of the Faculty of Languages and Literature और ELC standalone भी बहुत सारी जो है वो supplementary हमारे programs हैं. हमारा एक बड़ा important program है which is called the Skill Center, और Skill Center में हम students को extra classes के ज़रिए उनकी जो भी English में जो उनको ज़रूरत है support की, writing में, listening में, speaking में, वो हम देते हैं. उसके साथ हमारा है Writing Support Center. This is part of our strategic pillar to become part of an international university. किसी भी university को देख लें international, उनका एक writing support center होता है जो पूरी university को provide करता है editorial services उनके research articles के लिए, और students को हम provide करते हैं tutorials के. कोई भी student किसी भी department का अगर वो बैठ के किसी हमारे team member के साथ थोड़ा सा time spend करना चाहते हैं अपने writing को improve करने के लिए या speaking को, ज़्यादा हम writing support centers, we focus on the writing, तो हम उनकी help करते हैं. और साथ ही में हमारा जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस का भी है. वी टीच फॉरेन लैंग्वेजेस टू द एंटायर यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं. अभी हम चाइनीज और फ्रेंच क्लासेस जो है वो ऑफर कर रहे हैं थ्रू द ELC. थैंक यू.
0: तो उन क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है?
1: उनकी रेगुलर ड्यूरेशन होती है. स्किल सेंटर की जो क्लास होती है वो एक हफ्ते में 3 आवर्स की क्लास होती है. एंड जो हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस की क्लास होती है वो हमारी इंग्लिश की क्लास की तरह वी हैव 1 आवर प्लस स्लॉट, एंड दैट इज also a 3 credit hour course. So these are proper courses through the university. Unke 3 hours jo hai wo credit hours hote hain.
0: So ma'am, aap bataye ke learning center kis tarah se contribute kar raha hai, aap kuch add karna chahe to kahengi.
2: मैं थोड़ा सा इसमें आपको और बताना चाहती हूँ स्किल सेंटर के बारे में, क्योंकि ये एक हमारा प्राइम प्रोजेक्ट है जो कि जब का ELC जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर को डेवलप किया, उसके साथ ही हमने स्किल सेंटर स्टार्ट किया. ये हम कुछ एक्स्ट्रा जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द UCP स्टूडेंट्स. आप जो पहले क्वेश्चन कर रही थी कि जो डिफरेंट एरियाज से स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं और उनकी जो है आप कह लें कि प्रोफिशिएंसी भी डिफरेंट होती है अबाउट द लैंग्वेज, उसको हम कैसे केटर करते हैं और उनको एट पार लेके आते हैं, तो स्किल सेंटर इस सिलसिले में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. उसमें ये है कि ये एक 0 credit कोर्स है, पास फेल के बेस पे है ये. इसमें ग्रेडिंग नहीं हम करते हैं, ठीक है, और इसमें हम फोकस करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के ऊपर. और उस किस तरह हम फोकस करते हैं कि हम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को जो कि एंट्री टेस्ट में जिनके 50% या उससे कम मार्क्स आते हैं उनको हम एनरोल करते हैं स्किल सेंटर में. और उसकी हम अलहदा से, और उसके लिए हम अपने जो बहुत ज़्यादा सीनियर हमारी फैकल्टी है उसको हम डेडिकेट करते हैं फॉर दीज क्लासेस, ठीक है. हमारे टीम लीड्स और हमारी जो सीनियर फैकल्टी है वो ये क्लासेस लेती है. जैसे शीबा ने कहा कि 3 credit hours, इनकी भी प्रॉपर क्लास है और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट UCP के स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, उसको हम कोई चार्ज नहीं करते. और आप ये देखिए कि द बेस्ट ऑफ आर टीचर्स वो उनको साइड बाय साइड, दे आर टेकिंग एन इंग्लिश कोर्स इन English 1 एंड साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी हम उनको स्किल सेंटर भी ऑफर कर रहे हैं उतने ही आवर्स का, और वीक में 3 hours की क्लास होती है उसकी भी. और उसमें हमारा मुकम्मल फोकस जो होता है वो एक बहुत ही फन लविंग एनवायरनमेंट, एक बहुत ही रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में होता है, जिसमें कि हम ना सिर्फ जिस तरह मैंने आपको बताया कि English 1 में एक्टिविटीज़ को हम करते हैं उस पर बेस करता है, बल्कि इसमें टीचर्स के पास भी फ्री हैंड होता है कि वो अपनी क्लास की जो है कैपेबिलिटी को देखते हुए वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं. अब जैसे स्किल सेंटर के जो टीचर्स हैं वो फिर शॉर्ट मूवीज़ भी दिखाते हैं, वो पॉडकास्ट भी दिखाते हैं उसके अंदर, वो लिसनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि जो वो बच्चे हैं जो कि किसी वजह से भी जो है वो कुछ पीछे रह सकते हैं तो वो उसको कवर कर सकें, ना सिर्फ कवर कर सकें बल्कि ज़्यादा बेहतर हो सकें. और जितना ज़्यादा उसमें स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर किया जाता है, क्योंकि क्लास में इतना मौका नहीं मिलता, आपने सिलेबस भी ख़त्म करना है, आपने जो है वो टर्मिनल एग्ज़ाम्स की तरफ भी जाना है, आपने हर चीज़ करनी है, तो इसमें भी है, एग्ज़ाम्स हैं, असेसमेंट्स हैं, इट्स नॉट लाइक दिस कि वो नहीं है, लेकिन वो इस तरह है कि उनको बेस किया जाता है स्टूडेंट्स के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल इस आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो प्लीज़ ज़रूर इसको अटेंड करें अगर वो एनरोल हो गए हैं उसके अंदर, क्योंकि ये उनकी एक प्रोफिशेंसी, उनकी एबिलिटी जो कि लैंग्वेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच गुड इन योर स्टडीज़ इन योर ओन सब्जेक्ट, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो यू आर अनएबल टू परफॉर्म बेटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर इसमें अगर वो एनरोल हो गए हैं तो वो रेगुलरली अटेंड करें इसकी क्लासेस को।
0: मैम, कम्युनिकेशन को लेके ही मेरा क्वेश्चन है, मतलब हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स राइटिंग में और उनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो।

0: माइंड में, जो कुछ हमारी मदर कह रही होती हैं, हमारे सिबलिंग्स कह रहे होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कह रहे होते हैं, हम उससे एक इमेजेस बनाते हैं. एंड देन आफ्टर एन ईयर एंड हाफ वी स्टार्ट टॉकिंग, हम वॉइसेस वॉइस आउट करना शुरू करते हैं, जो कि इतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना. बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे बच्चे आते हैं तो प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होती,
1: जी
0: तो उनके एक्सेंट ठीक नहीं होते, ठीक है. बिल्कुल ये ऐसे ही होता है. तो ये इतना नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग का. तो मैं हमेशा बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ कि वो जितना ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, मतलब वो इसके लिए वो मूवीज़ देखें इंग्लिश लैंग्वेज की, वो प्रोग्राम सुने. अब तो बहुत जो है उनके पास एवेन्यूज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है. द मोर दे लिसन द मोर दे विल बी एबल टू स्पीक वेल, ठीक है. और दूसरी जो चीज़ है कि जो कि बहुत तेज़ी से डिमिनिश होती जा रही है, इवन एल्डर्स में भी ये एक चीज़, हमारी रीडिंग हैबिट्स बहुत जो हैं वो एक उनको सेटबैक मिला है
1: जी
0: मीडिया और इन सब चीज़ों की इतनी फरावानी की वजह से. तो मेरा ये एडवाइस है कि ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट का है. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत फिलोसफिकल चीज़ें पढ़ें. आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप एटलीस्ट स्पोर्ट्स के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें. अगर आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, आप मूवीज़ के रिव्यू पढ़ना चाहते हैं, आप वो पढ़ें. आपको फूड से इंटरेस्ट है तो फूड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, ठीक है. जो इंटरेस्ट है पहले आप इस तरह स्टार्ट करें. जब आप इस तरह स्टार्ट करेंगे और आपको रीडिंग की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप और भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और फिर उसको आप यूज़ करें. जो नए वर्ड्स सीखते हैं आप उनको लाजमी यूज़ करें, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ स्पोकन प्रोसेस. जब तक आप बोलेंगे नहीं वो आएगा नहीं आपको, ठीक है
1: जी
0: ना. यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव दैट के हमारे जितनी भी रिलेटिव्स या हम खुद भी जाते हैं, जब भी अब्रॉड जाएंगे तो आप बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ कंपल्शन होती है कि आपने बोलना है. तो आप जब तक ये कंपल्शन अपने ऊपर नहीं लेके आएंगे कि मैंने बोलना है, तो उस वक्त तक ये बेहतर नहीं होगा ना.
1: लिसनर, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद और फिर से हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन. तब तक सुनते रहिए रेडियो 92.6.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड आई एम योर होस्ट उम्मे हबीबा। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मैम तैयबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि हमें बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बुक रीडिंग लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो गया ना, तो उस चीज़ को हम अपने लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं?
2: अच्छा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर जो है वो सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और न्यूज़पेपर्स में, और स्पेशली उनके जो संडे मैगजीन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है हर तरह का, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और हर तरह का, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इंटरेस्ट की उनकी टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप गुड

0: रीड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किंडल पे जा सकते हैं, आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली आजकल की जनरेशन उस तरह कंफर्टेबल है, तो वो। और इसमें बस बेसिक चीज़ ये है कि आप बेशक एक पेज पढ़ें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जी पूरी पूरी वो। और फिर दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो कि हम यूनिवर्सिटी में भी है, और यूनिवर्सिटी हमारा जो फैकल्टी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हमने रीडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन रीडिंग सर्कल्स में आएँ। उसमें ये होता है कि कोई एक बुक चूज कर ली जाती है और उसके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि उस पर फिर डिस्कशन होती है, और किसी भी राइटर को भी बुलाया जाता है समटाइम्स, और टीचर्स तो होते हैं, तो एक ज़बरदस्त सी डिस्कशन जब होती है तो बच्चों का खुद ब खुद स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज एवेन्यूज।
1: तो मैम शीबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन को किस तरह इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकता है?
2: देखिए, जो हम बात करें रीडिंग की, राइटिंग की, तो ये एक्चुअली दीज आर यू कैन कॉल देम लाइक एक्सरसाइजेस फॉर योर ब्रेन। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, राइट? कि जो बंदा जिम जाएगा
1: जी,
2: उन्हीं के जो मसल्स हैं वो टोन होंगे, बाकी जो जिम नहीं जाएंगे उनके मसल्स टोन नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम एफर्ट करेंगे, स्टोरी टेलिंग के एफर्ट करेंगे, स्टोरी रीडिंग के एफर्ट्स करेंगे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर अप होते हैं और वो डिवेलप होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक डिसिप्लिन है, उसमें ये होता है कि लोग एक तरीके से एक लय में एक नैरेटिव बताते हैं बैठ के। और जो हमारा करंट जो लिटरेचर है वो शुरू ही स्टोरी टेलिंग से हुआ था। जो पुरानी जो जैसे आपने सुना होगा पिशावर में है किस्सा खानी बाज़ार, तो उसमें ये होता था कि पुराने जो ट्रेडर्स होते थे वो तजारत करते हुए जब ट्रैवल करते थे तो वो शाम के टाइम उन्होंने बैठना होता था, उन्होंने आराम करना होता था, बैठते थे और आग जली होती थी क्योंकि मौसम ठंडा जो होता था, एंड दे वुड टेल स्टोरीज। तो वो कोई आम कहानियाँ नहीं होती थी, वो पुराने वॉर्स की कहानियाँ और ग्रैंड टेल्स, और जो पुरानी फिर नज़में जो बनी जिसको अंग्रेज़ी में हम ओड्स कहते हैं तो और एलिजीज़ कहते हैं, वो लंबी कहानियाँ हैं जो पुराने लोग बताते बताते इस मतलब एक पॉइंट पे आए कि वो उसको किसी ने लिखना शुरू किया। सो स्टोरी टेलिंग में आपका कल्चर प्रिजर्व होता है, स्टोरी टेलिंग में आपकी वैल्यूज़ प्रिजर्व होती हैं, और स्टोरी टेलिंग में जो बता रहा होता है कहानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बयानिया करने की उसकी प्रैक्टिस होती है। सो ये एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, और ये आपके हर फील्ड में यूज़ होता है। देखें, अगर आप लॉ में जब आपका मूट कॉम्पिटिशन होता है, जब एक वकील जो है वो अपना केस लड़ रहा होता है, तो दे एम्प्लॉय स्टोरी टेलिंग। आप मार्केटिंग में जाएँ जो बिजनेस के लोग हैं, तो पिच जिसको हम कहते हैं दैट इज़ बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी and selling your product. So this is storytelling. ये इसके फवायद हैं और ये इसकी थोड़ी सी background है।
1: मैम, जैसे कि हमें English proficiency test आजकल देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि जो English proficiency test है वो वाकया ही एक person की abilities को accurately reflect करता है कि उसका कितना potential है?
2: ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट ग्रेड इम्पॉर्टेंट है या काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्रेड इंसान की काबिलियत को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्या वो सारी कंडीशंस जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट की होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं, राइट? लेकिन उसमें जो एजुकेशन की जो थियोरी है या फिलोसफी है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो एक तराजू चाहिए ना किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो टेस्ट एक वे टू मेजर है, तराजू है जिसके ऊपर आप रख के देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो इन कंडीशंस के अंदर बैठ के क्या इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं। बेशक के वो कंडीशंस अननेचुरल होती हैं, टेस्ट का स्ट्रेस होता है, राइट? बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आते हैं कि उनमें कितनी रिजिलियंस है, उनका कितना डिसिप्लिन है, उनकी इवन टू सर्टेन एक्सटेंट मेमोरी रिटेंशन कितनी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। तो टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स उसके ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट की बिना पे एक इंसान की पूरी काबिलियत को तो नहीं मेजर कर सकते, बट इट इज़ क्वाइट वी कैन से हेफ्टी वे टू मेजर स्टूडेंट्स पोटेंशियल।
1: तो मैम शीबा देखें, जैसे हम देखते हैं आजकल, वैसे तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल स्टडी वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. वैसे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ रहे हैं. तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज अ प्रोफेशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए किस तरह रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगी?
2: एज अ प्रोफेशन देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के हर कोने में यूज में, पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हैवी हुई इस तरह से कि जिनकी वो लैंग्वेज थी उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें समेट ली. राइट, आपने कोई रेसिपी पढ़नी है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, आपने कोई मैनुअल देखना है किसी भी प्रोडक्ट का वो सबसे पहले इंग्लिश में है, आपने कोई भी लॉ बनाना है वो आप जाके तो इंग्लिश में ही आ जाके वो बनता है. सो इंग्लिश का जो वेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ. जो लोग इंग्लिश में एक कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी या एक्सीलेंस रखते हैं, ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन द लैंग्वेज. सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज करते हैं एज देयर प्रोफेशन, दे एंड अप हैविंग अ एडवांटेज एनी हाउ. इसको आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप इंग्लिश की डिग्री करते हैं, लोग बिजनेस में जाते हैं, लोग साइकोलॉजी में जाते हैं, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं,
1: उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनली स्कोप बन जाता है लैंग्वेज
3: और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं. और जो ये बात है ना, हम अभी ELC के हवाले से कर रहे थे, इसमें ये है कि हमने जहाँ पे और हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे हम हमारा बहुत रोल है कि हम बहुत सी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू टीचर्स एज वेल. ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है LIC जो है UCP में और CPE उसके थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है. तो मैं चूंकि मैनेजमेंट में हूँ तो मैं थोड़ा सा उधर की बात भी करूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल्दो और ये भी बताता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की, जो आप पहले क्वेश्चन मिस शीबा से कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस है तो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है. अगर ये इम्पोर्टेंस ना हो तो हमें इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए ना, बिकॉज लैंग्वेज इट्सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. और फिर इसके अलावा हमने पिछले सेमेस्टर में CP के ही प्लेटफॉर्म से, जो कि UCP में है, उससे हमने जो है IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज भी ऑफर किए थे. वो पेड थे लेकिन वो भी हमने ऑफर किए.
1: वो तो देखा जाता है ना कि जैसे IELTS का सिस्टम भी बेस करता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो UCP के अंदर भी जो एक कोर्स पैक चलाया जा रहा है वो भी उसी पे बेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बाद में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसानी होती है.
3: यस, यू आर राइट.
1: तो मैम तैयबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ.
3: अच्छा, मैं भी रिसेंटली बड़ा खुश हुई, मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनकी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी. तो और मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, और अब वो BS करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं UCP में, तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो शाई इवन टू स्पीक समथिंग और राइट, और लैंग्वेज इतनी आप कह लें कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी कि वो ही ऑलवेज सेज टू मी कि आप प्लीज़ उर्दू में क्वेश्चन ले लिया करें, क्योंकि आई एम वेरी अ बिट स्ट्रिक्ट कि मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना क्लास में और ये वो इस तरह. तो मतलब वो उस तरह के लेवल का बच्चा था कि एक तो शाये भी बहुत, एक वो उसको ना वो सारा. और अब जब BS करने के बाद उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी, मुझे कहा कि आप इस पे रिव्यू दें अपना, तो इट वाज रियली मुझे फील हुआ कि शायद कहीं मैंने भी कुछ मेहनत तो उसी की है डेफिनेटली कि वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद UCP ने और मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ तक लेके आने में. तो ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ.
1: एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा जाता है, पढ़ाई से हटके वो आपको जिंदगी के मामलात में भी बहुत सी गाइडेंस देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी में ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि अपनी बाहर की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैम शीबा, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग।
2: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स शायरी करते हैं, दे राइट स्टोरीज, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एक मूड कंपटीशन में इस्लामाबाद में, एंड दे वर एबल टू विन द कंपटीशन। और हम लोग खुद भी अपने टीचर्स का ही प्रोडक्ट है ना, तो आई थिंक UCP में हमारी बहुत कोशिश है, एंड आई रियली अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट ऑफ UCP। एक बहुत ही कंडक्टिव एनवायरनमेंट है जिसमें लोग पढ़ते हैं और एन्जॉयमेंट भी होती है, और इसमें एक मेंटोरशिप हमारा चलता है, बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करते हैं। और इस तरह से ऑफकोर्स देखें, स्टडीज़ बेशक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, या कोई भी और डिसिप्लिन हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ईजी तो है ही नहीं, अगर ईजी होती तो फिर इसका कोई ऑनर नहीं होता। आखिरी दिन ग्रेजुएशन पे जब स्टूडेंट्स को उनका गाउन होता है, उनका मोटर बोर्ड होता है, उनको जब डिग्री दी जाती है तो वो एक ऑनर है। तो वो ऑनर आसानी, कोई भी ऑनर आसानी से नहीं मिलता। तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एट UCP स्पेशली टू प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी। वी हैव द जिम, वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, एंड वी हैव वंडरफुल कैफेटेरियाज़, के स्टूडेंट्स का एक हेल्दी इन्वायरमेंट में वो नर्चर एंड ग्रो कर सके।
1: जी जी, जैसे कि देखा जाता है कि UCP का जो कैरियर सर्वे सेंटर है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है इस फील्ड में, कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो प्रोफेशनली इन हो जाते हैं उन सारी चीज़ों में। जी लिसनर्स, तो ये था आज का शो। हमारे साथ दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट थी, मैम तैयबा राना एंड मैम शीबा सुल्तान। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, एज अ प्रोफेशन आप इंग्लिश को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह
4: हाफिज़। खामोश भी हम हैं जुबां, हम हैं सबर, हम ही सजा, हम कातिब भी हम दास्तां।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज, दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
1: सुनते रहिए।

मोहब्बत हसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। ठीक है जी, इसके भी मौसीकार रशाद साबित। तो उन्होंने कहा कि बेबी ये किसने बनाया गाना, अजीब है इतनी मुश्किल बंदिश और क्लासिकल अंग में कितनी आसानी से उसने ये बोल कहवा दिए तुमसे। उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली वही, मैंने कहीं इसमें अपने पास से जगह नहीं की। जगह कहते हैं मौसीकी की जुबान में इनोवेशन को। एग्जैक्टली मैंने वही कहा। उन्होंने कहा जी वजीर अफसल कभी अगली दफा में आई जिंदगी रही आपको, उन्होंने कहा मेरी तरफ से जाकर उसको कहना कि तुमने कमाल कर दिया। क्लासिकी अंग को, क्लासिकी तर्ज मौसीकी को इस तरीके से बोलों में आसानी के साथ समो देना, वो मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो ये वो वजीर अफसल थे जो कि कटरी बाबा से उनका ताल्लुक था। और इन्होंने भी बहुत बड़े, हाँ याद आ गया, अगर इस फिल्म का मैं जिक्र ना करता तो यकीन कीजिए ये सारे का सारा प्रोग्राम अगर बाद में मुझे याद आता तो मैं समझता अकारत क्या, बेमकसद हो गया। फिल्म थी दिलदा जानी, उसके मौसीकार भी वजीर अफसल थे। सही होनी मेरे दिलदा जानी, ठीक है जी। और यकीन कीजिए एक और गाना बताऊंगा इस फिल्म का, तीन गाने बताऊंगा, फिर मैं अपने प्रोड्यूसर साहब पे छोड़ूंगा। ये उनकी पसंद पे है, जाहिर है वो यहाँ बैठे हुए मेरे साथ खाली खामोश बैठे हुए मेरी सुन रहे हैं। पता नहीं बातें उनको पसंद भी आ रही कि नहीं आ रही, उनको भा भी रही है कि नहीं भा रही, सुन रहे हैं उनकी मेहरबानी है। क्योंकि सामईन बहुत कम मिलते हैं, खास तौर पे बिलमुशाफा नफसे नफीस बैठे हुए हैं। तो उनसे बाद में पूछूंगा कि आपने मेरी इस रिकॉर्डिंग के दौरान बुरी तो महसूस नहीं की, तो बाद में पूछूंगा उनसे मैं। और सिद्ध के दिल से पूछूंगा आपने मुनाफे से काम नहीं लेना, बनावट से काम नहीं लेना। तो वो दो तीन गाने बताऊंगा और इनकी सवाबदीद पे छोड़ूंगा सुहेल साहब की, जिस गाने क्योंकि एक से एक बढ़के गाना है, इनके लिए चुनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इन पे ये इस तरह कहा था ना, हाफिज ने फारसी के खेर है कि औसमा बौरे अमानत नथवानिस्त कशीद उर्राए फौल बिनौमे मने दीवाने सदंद। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जब जमीन पे खलीफा बना के भेजा तो इंसान ने कहा कि ये अमानत जो थी आसमान के बस की बात ही नहीं थी कि इसको उठाता, इसलिए मुझे इसको सौंपा और मुझे जमीन पे भेजा गया। इसलिए मैंने ये सुहेल साहब पे ये बारे अमानत डाल दिया है। पहला गाना मैंने ये बता दिया। दूसरा गाना जो मुझे बड़ा पसंद है वो था कि तेनु सामने बिठा के शर्मा ते एखो मेरा जी करदा। तीसरा गाना सही होनी मेरे दिल दा जानी, ये गाना। और इसका गाना है आ हा हा कोरस, नहीं कोरस गाना है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। बस तीन गाने मैंने बता दिए। अब ये सुहेल साहब पे है, जिस गाने को भी मुनासिब समझे चुने और आपको सुनवाएं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि ये दो गाने लगाएं ताकि आपको पता लगे कि इस दिलदा जानी, और इसमें एक और बात बताता चलूं आपको, दिलदा जानी ये जो फिल्म थी ना इसमें वही नीलो शान की वालिदा हीरोइन थी, और पहली फिल्म थी जो बहुत बाद मशहूर हुआ पंजाबी फिल्मों का हीरो, उसका नाम था इकबाल हसन। मरहूम हो चुके हैं अभी वो, बड़ी उन्होंने फिल्मों में काम किया, तो वो इसमें थे। और इसके जो हीरो थे हबीब साहब थे। हबीब साहब भी आपके लिए बायस हैरत होगा, अंग्रेजी अदब में एमए थे और पंजाबी फिल्मों में हीरो का काम करते थे। तो गाने सुनिए, सर धुनिए, और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, परवरदिगार हम सब का हाफिज व अमीन हो। जिंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पान।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1,
2: UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए,
3: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या मानी मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111178 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: सुरौरतान
1: सुरौरतान
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन
1: मस्ती के पास
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
2: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: सीधे की दुनिया।
1: कंट्रोल, आवाज आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
2: आवाज भी और
3: धड़कन भी सन्न हो गया।
1: The nets fly over and out.

ساعت امر شعور ذات راستہ بنانے دے.

तक। जिंदगी को जीने से, जिंदगी को पाने तक। उस कबा के उठने से उस कबा के खुलने तक। आंख के तमाजत से होंठ की हरारत तक। गाल पे लगा गाजा होंठ पे लगी लाली, खुद ब खुद पिघलने दे, खुद ब खुद पिघलने से खुद ब खुद पिघलने तक। खुद ब खुद पिघलने दे, हाथ की लकीरों से रत जगों के तीरों से और आगे जाने दे, और आगे जाने से और आगे जाने।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum and welcome to the Faculty Hour program. Today we have some amazing guests with us, जिनके साथ हम English learning को लेके myths और facts के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी English learning को कैसे improve कर सकते हैं. So stay tuned with us. आज हमारे साथ कुछ expert guest हैं. So let me introduce to them. At the first we have Ma'am Tayyaba Rana. She is Deputy Manager at English Language Center. इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश लर्निंग और मैनेजमेंट के फ्यूजन को समझने में बहुत मदद देगा। एंड नेक्स्ट वी हैव मैम शीबा सुल्तान। शी इज लेक्चरर एट UCP एंड टीम लीड राइटिंग सपोर्ट सेंटर। सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लर्न अलॉट फ्रॉम दैट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इंग्लिश लर्निंग को लेके क्या हो सकता है और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं?
3: अच्छा, थैंक यू हबीबा फॉर इनवाइटिंग मी एंड आस्किंग माय ओपिनियन अबाउट दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को जो लर्निंग का तरीका स्कूल्स और कॉलेजेस में है वो उस लेवल का नहीं है कि जैसे कि इंग्लिश बच्चों को पढ़नी चाहिए। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक स्किल है जिसमें कि हम मुख्तलिफ स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो हम कहीं सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि वी डोंट अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन, एंड उनकी वो आदत डेवलप हो चुकी होती है जब तक कि वो हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो बिल्कुल एक लेक्चर स्टाइल से पढ़ के आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम उनको एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। आपको मैं बताऊँ, और ये आपके लिए बहुत शायद नई बात भी हो लेकिन नहीं भी हो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी पढ़ रही हैं उस तरह से। हमने ELC में, जबकि डॉक्टर हबीब काजी साहब ने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने इंग्लिश को एक मॉडर्न जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको एक मॉडर्न फुटिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है। हम लोग जो हैं वो एक कैम्ब्रिज का जो है वो डिज़ाइंड सिलेबस या कोर्स पैक आप उसे कह लें, हम वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड, और हम उसमें इन स्किल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया इनके ऊपर फोकस करते हैं, और हम बच्चों को क्लास में लिसनिंग करवाते हैं। थैंकफुली वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन UCP, हमारे पास ऑडियो वीडियो, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ क्लास में अवेलेबल है, और प्रोजेक्टर्स हैं, मींस वी कैन हैव अ गुड यूज़ ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर वी हैव। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं। इसके अलावा जो है हमारी तमाम क्लासें जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स जो हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो खुद मतलब इट इज़ मोर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड लेस ऑफ टीचर सेंटर्ड। जबकि जो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, एज़ आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि उसमें क्या है कि वो तो एक लेक्चर स्टाइल है कि टीचर्स आते हैं और वो जो भी टॉपिक होता है वो बच्चों को क्लास में करवा के बस बोर्ड का यूज़ किया, एंड देन दे कम आउट ऑफ और स्टेप आउट ऑफ द क्लास। बट हम क्या करते हैं, वी गाइड द स्टूडेंट्स, वी टेल देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू यूज एंड हाउ दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देयर लैंग्वेज और देयर लैंग्वेज लर्निंग इनटू द एक्टिविटीज, एंड देन दे देमसेल्व्स डू इट। तो ये एक हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और हमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बच्चे इसको लर्न कर रहे हैं और उससे इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, होपफुली वो फील कर रहे हैं और
2: मैम, जैसे कि आपने बोला कि पीछे से वो एक टिपिकल जो काफी अरसे से लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो स्टूडेंट्स जब इधर आते हैं तो इनको एकदम बिल्कुल नया एनवायरनमेंट मिलता है इंग्लिश लर्निंग को लेके, तो समटाइम स्टूडेंट्स को उस चीज में ढलने में टाइम भी लगता है, तो टीचर्स किस तरह से उस चीज को हैंडल करते हैं कि स्टूडेंट्स उस एनवायरनमेंट को अच्छे से कोप अप कर सके?
3: अच्छा, हमारा चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वी टेक इनटू अकाउंट कि ये कैसे होगा। उसमें ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़, पेयर एक्टिविटीज़ और उससे हेल्प लेते हैं, और चूंकि ये सारा सिस्टम ही जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड पेयर एक्टिविटीज़ और डिस्कशन पे बेस करता है, तो उसमें यह है कि चूंकि स्टूडेंट्स दे आर कम्फर्टेबल विद देयर फेलो स्टूडेंट्स, विद देयर पीयर्स, और पीयर चेकिंग जो है एक बहुत हमारा एक खास आप कह लें कि वो है। उसमें बच्चों को ये डर नहीं होता कि टीचर हमें जो है वो कोई पिनलाइज करेगी किसी चीज़ के ऊपर या करेगा, ठीक है, तो वो एक अब एक इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम वो जो है वो यूज टू हो जाते हैं और वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, इट टेक्स टाइम, बट विद इन 4-5 weeks दे गेट इन टू दैट सिस्टम और हम फिर उसके मुताबिक उनको चलाते हैं, और हमने उसमें एक अपनी प्रोग्रेशन भी रखी हुई है, यानी अच्छा। कि जो इंग्लिश वन है उसमें हम उनको बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, और जो है वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मींस ग्रामर और सब चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं ना, उन्होंने तो चलते रहना
2: जी, जी।
3: है। उसके बाद जो इंग्लिश टू में वो जाते हैं तो वो फिर ऐसे राइटिंग एटलीस्ट 5 paragraph ऐसे को वो जो है वो करते हैं, उसमें मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी हैव डिजाइंड आर इंग्लिश 3 इन सच अ वे जो कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस है, ESP, वो हम फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं हर फैकल्टी के मुताबिक। अगर कोई मीडिया की फैकल्टी का बच्चा है तो उसका तमाम जो कंटेंट है वो मीडिया रिलेटेड है, अगर लॉ की फैकल्टी का बच्चा है तो द कंटेंट इज लॉ रिलेटेड, अगर IT का है तो वो IT से रिलेटेड है, तो फिर वो जो है हम उनको तैयार करते हैं कि वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो लैंग्वेज की जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं।
2: आई एम हैप्पी टू हियर दैट के इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स के उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। मैम शिबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि UCP एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है रूरल एरिया से होता है, जैसे सिंध हो गया, साउथर्न पंजाब, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स कैसे इफ़ेक्टिव टास्क दे सकते हैं कि उनको वो चीज़ें इजी लगें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होते हैं।
4: जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के सारे हिस्सों से आते हैं, और उसमें हम यही स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एरर करेक्शन को स्टूडेंट के ऊपर रेप्रिमांड नहीं करते, कि स्टूडेंट्स को हम कंफर्टेबल रखते हैं, और UCP का जनरल एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि वी अप्रिशिएट द वेरियस कल्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कल्चरल डे मनाया जाता है, हर स्टूडेंट का जो जिस खित्ते से वो आए हैं उनके कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है, तो क्लासरूम में भी हमारा ये एक स्टाइल है कि अगर जो स्टूडेंट जिस भी एक्सेंट में बात करता है या उनकी जैसी भी प्रोनंसिएशन है, हम उसको इनक्रेज करते हैं कि वो उसको जो है वो बेशक स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश की तरफ लेके चलें, लेकिन देर इज़ नो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स। वी इनक्रेज आर students to speak with their accents, we encourage them to improve their pronunciation, or rather to take their pronunciation towards standardized English with the passage of time. तो एकदम से हम उनको नहीं बम्बार्ड कर देते चीज़ों के साथ, हम उनको उन्हीं के स्टाइल में लेके चलते हैं, और ये जैसे कि मैम ने बताया है कि वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, तो इवन हमारी जो एंड ऑफ सेमेस्टर की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होती हैं वो ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं, सो वी गिव अ चॉइस टू द स्टूडेंट्स कि आप सोलो प्रेजेंटेशन करना चाहें तो कर लें, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि बच्चों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है।
2: यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैम से क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे, तब तक सुनते रहिए FM 92.6।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड आई एम योर होस्ट उम्मे हबीबा। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। मैम तैयबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि हमें बुक रीडिंग की हॉबी डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो बुक रीडिंग लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो गया ना, तो उस चीज़ को हम अपने लिए कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं?
2: अच्छा, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप जो है न्यूज़पेपर जो है वो सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और न्यूज़पेपर्स में, और स्पेशली उनके जो संडे मैगजीन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है हर तरह का, ठीक है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और हर तरह का, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली इंटरेस्ट की उनकी टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा आप बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप गुड रीड्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किंडल पे जा सकते हैं, आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली आजकल की जनरेशन उस तरह कंफर्टेबल है, तो वो। और इसमें बस बेसिक चीज़ ये है कि आप बेशक एक पेज पढ़ें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जी पूरी पूरी वो। और फिर दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो कि हम यूनिवर्सिटी में भी है, और यूनिवर्सिटी हमारा जो फैकल्टी है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, हमने रीडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इन रीडिंग सर्कल्स में आएँ। उसमें ये होता है कि कोई एक बुक चूज़ कर ली जाती है और उसके चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि उस पर फिर डिस्कशन होती है, और किसी भी राइटर को भी बुलाया जाता है समटाइम्स, और टीचर्स तो होते हैं, तो वो एक ज़बरदस्त सी डिस्कशन जब होती है तो बच्चों का खुद ब खुद स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिवेलप हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑल दीज एवेन्यूज।
1: तो मैम शीबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन को किस तरह इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं?
3: देखिए, जो हम बात करें रीडिंग की, राइटिंग की, तो ये एक्चुअली दीज आर यू कैन कॉल देम लाइक एक्सरसाइजेस फॉर योर ब्रेन। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, राइट? कि जो बंदा जिम जाएगा
1: जी,
3: उन्हीं के जो मसल्स हैं वो टोन होंगे, बाकी जो जिम नहीं जाएंगे उनके मसल्स टोन नहीं होंगे, राइट? तो अगर हम एफर्ट करेंगे, स्टोरी टेलिंग के एफर्ट करेंगे, स्टोरी रीडिंग के एफर्ट्स करेंगे, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर अप होते हैं और वो डिवेलप होते हैं। स्टोरी टेलिंग एक डिसिप्लिन है, उसमें ये होता है कि लोग एक तरीके से एक लय में एक नैरेटिव बताते हैं बैठ के। और जो हमारा करंट जो लिटरेचर है वो शुरू ही स्टोरी टेलिंग से हुआ था। जो पुरानी, जो जैसे आपने सुना होगा पेशावर में है किस्सा खवानी बाज़ार, तो उसमें ये होता था कि पुराने जो ट्रेडर्स होते थे वो तजारत करते हुए जब ट्रैवल करते थे तो वो शाम के टाइम उन्होंने बैठना होता था, उन्होंने आराम करना होता, तो बैठते थे और आग जली होती थी क्योंकि मौसम ठंडा जो होता था, एंड दे वुड टेल स्टोरीज। तो वो कोई आम कहानियाँ नहीं होती थी, वो पुराने वॉर्स की कहानियाँ और ग्रैंड टेल्स, और जो पुरानी फिर नज़में जो बनी, जिसको अंग्रेज़ी में हम

0: वुड्स कहते हैं तो, और एलिजीज कहते हैं, वो लंबी कहानियां हैं जो पुराने लोग बताते बताते इस मतलब एक पॉइंट पे आए कि वो उसको किसी ने लिखना शुरू किया. सो स्टोरी टेलिंग में आपका कल्चर प्रिजर्व होता है, स्टोरी टेलिंग में आपकी वैल्यूज प्रिजर्व होती हैं, और स्टोरी टेलिंग में जो बता रहा होता है कहानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक बयानिया करने की उसकी प्रैक्टिस होती है. सो ये एक डिसिप्लिन है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है और ये आपके हर फील्ड में यूज़ होता है. देखिए, अगर आप लॉ में जब आपका मूट कॉम्पिटिशन होता है, जब एक वकील जो है वो अपना केस लड़ रहा होता है, तो दे एम्प्लॉय स्टोरी टेलिंग. आप मार्केटिंग में जाएँ जो बिजनेस के लोग हैं, तो पिच जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली टेलिंग अ स्टोरी and selling your product. So this is storytelling. ये इसके फवायद हैं और ये इसकी थोड़ी सी background है.
1: मैम, जैसे कि हमें English proficiency test आजकल देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि जो English proficiency test है वो वाकई ही एक person की abilities को accurately reflect करता है कि उसका कितना potential है?
0: ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट ग्रेड इम्पॉर्टेंट है या काबिलियत इम्पॉर्टेंट है, क्या ग्रेड इंसान की काबिलियत को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, क्या वो सारी कंडीशंस जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट की होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं या नहीं करती हैं, राइट. लेकिन उसमें जो एजुकेशन की जो थियोरी है या फिलॉसफी है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो एक तराजू चाहिए ना किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. तो टेस्ट एक वे टू मेजर, एक तराजू है जिसके ऊपर आप रख के देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो इन कंडीशंस के अंदर बैठ के क्या इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं. बेशक के वो कंडीशंस अननेचुरल होती हैं, टेस्ट का स्ट्रेस होता है, राइट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आते हैं कि उनमें कितनी रिजिलियंस है, उनका कितना डिसिप्लिन है, उनकी इवन टू सर्टेन एक्सटेंट मेमोरी रिटेंशन कितनी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है. तो टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स उसके ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट की बिना पे एक इंसान की पूरी काबिलियत को तो नहीं मेजर कर सकते, बट इट इज़ क्वाइट वी कैन से हेफ्टी वे टू मेजर अ स्टूडेंट्स पोटेंशियल.
1: तो मैम शीबा, देखें जैसे हम देखते हैं आजकल, वैसे तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो एज अ प्रोफेशनल स्टडी वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. वैसे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एज अ प्रोफेशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए किस तरह रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेशन इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगी?
0: एज अ प्रोफेशन देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के हर कोने में यूज़ में, पूरी दुनिया की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश लैंग्वेज इतनी हैवी हुई इस तरह से कि जिनकी वो लैंग्वेज थी उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें समेट ली, राइट. आपने कोई रेसिपी पढ़नी है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, आपने कोई मैनुअल देखना है किसी भी प्रोडक्ट का वो सबसे पहले इंग्लिश में है, आपने कोई भी लॉ बनाना है वो आप जाके तो इंग्लिश में ही आ जाके वो बनता है. सो इंग्लिश का जो वेट है वो अभी तक कम नहीं हुआ. जो लोग इंग्लिश में एक कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी या एक्सीलेंस रखते हैं, ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट इज़ अवेलेबल इन द लैंग्वेज. सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज़ करते हैं एज देयर प्रोफेशन, दे एंड अप हैविंग अ एडवांटेज एनी हाउ. इसको आप किसी भी फील्ड में ले लें, आप इंग्लिश की डिग्री करते हैं, लोग बिजनेस में जाते हैं, लोग साइकोलॉजी में जाते हैं, लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं,
1: उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनली स्कोप बन जाता है
2: और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं. और जो ये बात है ना, हम अभी ELC के हवाले से कर रहे थे, इसमें ये है कि हमने जहाँ पे और हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे हमारा बहुत रोल है कि हम बहुत सी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स बट टू टीचर्स एज वेल. ठीक है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको जो है LIC जो है UCP में और CPE उसके थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है. तो मैं चूंकि मैनेजमेंट में हूँ तो मैं थोड़ा सा उधर की बात भी करूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल दो और ये भी बताता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज की, जो आप पहले क्वेश्चन मिस शीबा से कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस है तो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है. अगर ये इम्पोर्टेंस ना हो तो हमें इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए ना, बिकॉज लैंग्वेज इट्सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. और फिर इसके अलावा हमने पिछले सेमेस्टर में CP के ही प्लेटफॉर्म से, जो कि UCP में है, उससे हमने जो है IELTS और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज भी ऑफर किए थे. वो पेड थे लेकिन वो भी हमने ऑफर किए.
1: वो तो देखा जाता है ना कि जैसे IELTS का सिस्टम भी बेस करता है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो UCP के अंदर भी जो एक कोर्स पैक चलाया जा रहा है वो भी उसी पे बेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बाद में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा आसानी होती है.
2: यस यू आर राइट.
1: तो मैम तैयबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या कोई ऐसा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ.
2: अच्छा, मैं अभी रिसेंटली बड़ा खुश हुई, मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनकी एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी. तो और मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, और अब वो BS करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 years हो गए हैं UCP में, तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ही वॉज सो शाई इवन टू स्पीक समथिंग और राइट, और लैंग्वेज इतनी आप कह लें कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल की थी कि वो ही ऑलवेज सेज टू मी कि आप प्लीज़ उर्दू में क्वेश्चन ले लिया करें, क्योंकि आई एम वेरी अ बिट स्ट्रिक्ट कि मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना क्लास में और ये वो इस तरह. तो मतलब वो उस तरह के लेवल का बच्चा था कि एक तो शाये भी बहुत, एक वो उसको ना वो सारा. और अब जब BS करने के बाद उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी, मुझे कहा कि आप इस पे रिव्यू दें अपना, तो इट वाज रियली मुझे फील हुआ कि शायद कहीं मैंने भी कुछ मेहनत तो उसी की है डेफिनेटली कि वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद UCP ने और मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ तक लेके आने में. तो ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ.
1: एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा जाता है, पढ़ाई से हटके वो आपको जिंदगी के मामलात में भी बहुत सी गाइडेंस देता है. और अल्हम्दुलिल्लाह UCP में ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एजुकेशनल बल्कि अपनी बाहर की जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखते हैं. तो मैम शीबा, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग.
0: जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स शायरी करते हैं, दे राइट स्टोरीज, दे आर एबल टू रिप्रेजेंट अस. अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एक मूड कंपटीशन में इस्लामाबाद में, एंड दे वर एबल टू विन द कॉम्पिटिशन. और हम लोग खुद भी अपने टीचर्स का ही प्रोडक्ट है ना, तो आई थिंक UCP में हमारी बहुत कोशिश है. एंड आई रियली अप्रिशिएट द एनवायरनमेंट ऑफ UCP. एक बहुत ही कंडक्टिव एनवायरनमेंट है जिसमें लोग पढ़ते हैं और एन्जॉयमेंट भी होती है, और इसमें एक मेंटोरशिप हमारा चलता है. बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स की मेंटोरिंग करते हैं और इस तरह से. ऑफ कोर्स देखें, स्टडीज़ बेशक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो या कोई भी और डिसिप्लिन हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. ईजी तो है ही नहीं. अगर ईजी होती तो फिर इसका कोई ऑनर नहीं होता. आखिरी दिन ग्रेजुएशन पे जब स्टूडेंट्स को उनका गाउन होता है, उनका मोटर बोर्ड होता है, उनको जब डिग्री दी जाती है तो वो एक ऑनर है. तो वो ऑनर आसानी, कोई भी ऑनर आसानी से नहीं मिलता. तो मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एट UCP स्पेशली टू प्रोवाइड आर स्टूडेंट्स विद एवरी फैसिलिटी. वी हैव द जिम, वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, एंड वी हैव वंडरफुल कैफेटेरियाज के स्टूडेंट्स का एक हेल्दी इन्वायरमेंट में वो नर्चर ग्रो कर सके.
1: जी जी, जैसे कि देखा जाता है कि UCP का जो कैरियर सर्वे सेंटर है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है इस फील्ड में, कि बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं वो प्रोफेशनली इन हो जाते हैं उन सारी चीज़ों में. जी लिसनर्स, तो ये था आज का शो. हमारे साथ दो रिस्पेक्टेबल गेस्ट थी, मैम तैयबा राना एंड मैम शीबा सुल्तान. आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, एज अ प्रोफेशन आप इंग्लिश को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं. मजीद इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.
3: हम राज भी हम है आया. खामोश भी हम हैं जुबान, हम हैं सबर हम ही सजा, हम कातिब भी हम दास्तां।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुरौरताल
1: सुरौरताल
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
4: यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया,
4: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.